0: विद्रु अदृष्ट जे क्रमचार उस्तत संपूर्ण
1: श्राक महला पहला पे पांडे साजे ना पे पुरंदे एक ने दत समय एक चल रहे चढ़े एक ने हाली पैसन एक परन।

या अंदर जियो सबसे जान ला सब तेरे बस तेरा कर पला तेरे कर अंग बधाई तुझ कर मान महता ते जा प्राप जर सत कला।

बस चित है बसे। गुरु ग्रंथ पाशा आप जी ने तरस की संरचना पाशा कीर्तन आदि पर सब आप जी तो पुटान संगता वालों गुरु प्यारे हो बेअंत माया हाजिर हुए पाशा जी नाम जानी जान सतगुरु जीओ सबना दिया चरज कलाब सेवा लेके चलाना कारोबार जे वादे अपने दरों करो चरज कला उच्चा सच्चा जिन बख्शिश नवाजना यात्रा सफल करनी महाराज।

0: प्रताप तीन लोक जय जय कर रे नाम सुजाब दोहरा सगल द्वार को छाड़ कह गह द्वार द्वार बाहे गह की लाज सु गोविंद दास द्वार दोहरा
1: राज करेगा खालसा
0: आगे रहना कोई।

जो बाबा उसके लिए तो बाबा उसके लिए तो बाबा उसके लिए तो बाबा उसके लिए तो बाबा उसके लिए तो बाबा उसके लिए तो बाबा उसके लिए तो बाबा उसके लिए तो बाबा उसके लिए तो बाबा उसके लिए तो बाबा उसके लिए तो बाबा उसके लिए तो बाबा उसके लिए तो बाबा उसके लिए तो बाबा उसके लिए तो बाबा उसके लिए तो बाबा उसके लिए तो बाबा उसके लिए तो बाबा उसके लिए तो बाबा उसके लिए तो बाबा उसके लिए तो बाबा उसके लिए तो बाबा उसके लिए तो बाबा उसके लिए तो बाबा उसके लिए तो बाबा उसके लिए तो बाबा उसके लिए तो बाबा उसके लिए तो बाबा उसके लिए तो बाबा उसके लिए तो बाबा उसके लिए तो बाबा

मर्दन रम्मक बर्दन दैत जिणन चंडासुर चंडन मुंड विमुंडन खंड अखंडन गुण किते दाम नीत मंगन दुजा फरन गण फणी फुंकारन जोध जिते सरधार विपर खण दुष्ट प्रकार खण पुष्ट प्रहर खण दुष्ट मथे जय जय हो सी महासुर मर्दन भूमा कासल ऊर्धा धे दामनी प्रहासन सुछम निवासन श्रेष्ठ प्रकाशन गो

अघ ओघ निवारण दुष्ट प्रजारण श्रेष्ठ उबारण शुद्ध मते फणियर फंकारण वाघ बकारण सहसारण साध मते सहति सन्नाहन अष्ट प्रवाहन बोल निवाहन तेज तुलन जय जय ओसी मघासुर मर्दन भूमा काश पताल जलं चाचर चमकारण चिच्छुर हारण धूम धुंकारण द्रप मथे दाढ़ विप्रदंते जोग जयंते मनुज मथंते गूढ़ कथे करम प्रणासन चंद प्रकाशन सूरज प्रतेजन अष्ट भुजे जय जय ओसी मघासुर मर्दन बनम विनाशन धर्म धुजे घुंगुरु खमंकण सहस्र झमंगण फणियर फुंकारण धरम धुजे अष्टाट प्रहासन श्रेष्ठ निवासन दुष्ट प्रणासन चक्र गते केसरी प्रवाहे सुत सन्नाहे अगमथा हे एक वृते जय जय ओसी मघासुर मर्दन आदि कुमार अगाध वृते सुर नर मुन बंदन दुष्ट निकंदन भ्रष्ट विनाशन मृत मथे काव रूप मारे अधम उदारे नरक निवारे आद कथे किंगणी प्रसोहन सुर नर मोहन सिंहारोहण बितल तले जय जय ओसी सब ठौर निवासन बाए पताल आकाशन ले संकटे निवारण अधम उदारण तेज प्रकार खंड तुंत तवे दुख दोग दहंती ज्वाल जयंती याद नाद अगाध अच्छे शुद्धता समर्पण तर्क वितर्कण तपत पतापन जपत जिवे जय जय होसी सहस्र प्रकर खण आद नीला गाद अभे चंचला जखंगी अलग भुजंगी तुंद तुरंगण तिछ सरे गर कसा कुठारे नरक निवारे अदम उधारे तूर भुजे दामनी दमंके के हर लंके आद तंके क्रूर कथे जय जय होसी रक्ता सुरखंडन सुंभ जगरतन सुंभ मथे बारज बिलोचन प्रतन विमोचन सोच विसोचन कौज कसे दामनी प्रहासे सुख सरनासे सुब्र सुब

घंटता बिराजे रुण झुन बाजे ब्रह्म बाजे सुरत सुरंग कोकिल सुन लाजे किल बिक बाजे सुगोप राजे मत उरंग दुर्जन दल दज्जय मंथन रिज्जय सब न भज्जे रोहरणन जय जय हो सीमा हसुर मर्दन चंड चक्रदन आद गुरन चाचरी प्रजोदन दुष्ट विरोधन रोष रोदन क्रूर विते धूमराज विदुंसन प्रलय प्रजुंसन जग विदुंसन शुद्ध मते जाल पा जयंती शत्रु मथंती दुष्ट प्रदाहन गाढ़ मते जय जय हो सीमा हसुर मर्दन आद जुगाद अगाध गते खत्रियान खतंगी अभय भंगी याद अनंगी अगाध गते विरलाज व्यंडन चछुर दंडन तेज प्रचंडन आद वृते सुर नर प्रतिपारण पति उदारण दोष निवारण दोख हरे जय जय हो सीमा का सुर मर्दन विश्व विदुन संश्रेष्ठ करे दामनी प्रकाशे उन्तन नासे ज्योत प्रकाशे अतुल बले दानवी प्रकरखण सर्वर वरखण दुष्ट प्रदरखण बितल तले अष्टायद बाहन बोल बाहन संत बनाहन गुड़ गते जय जय हो सीमा गाजुर मर्दन आद अनाद अगाध प्रते दुख दुख प्रवचन सेव करक्षण संत प्रतक्षण शुद्ध सरे सारंग सन्ना हे दुष्ट प्रदा हे अर्दल गाहे दुख हरे गंजन गुमाने अतुल प्रवाने संत जमाने आद अंते जय जय हो सीमा खासुर मर्दन साध प्रदक्षण दुष्ट हंते कारण करीली गर्भ कहीली ज्योत जतीली धुंध मते अष्टायद चम

करते बसार जद बबूतन भय अनंत तव कहो जथा मत त्रण तंत करता करीम कातर कृपाल अद्वय अभूत अनभय दयाल दादा दुरंत दुख दुख रहत जेह नेत नेत सब वेद कहत कई ऊच नीच कीनो बनाओ सब वार पार जा को प्रभाव सब जीव जंत जानंत जाहे मन मूड क्यों न सेवंत ताहे कई मूड पत्र पूजा करंत कई सिद्ध साध सूरस सेवंत कई पलट सूरस सिजदा कराए प्रभ।

कामल कृपाल दुख दोख हरत दाता दयाल अंजन विहीन अनभंजनाद जल थल प्रभाव सर्वत्र साथ। जय जात पात नहीं भेद भरम जय रंग रूप नहीं एक धर्म जय शत्रु मित्र दो एक सार अच्छा स्वरूप विचल पार। जानी न जाय जय रूप रेख कहे बास तास कहे कौन भेख कहे नाम तास है कवन जात जय शत्रु मित्र नहीं पुत्र भ्रात। करुणा निधान कारण स्वरूप जय चक्र जहन नहीं रंग रूप जय खेद भेद नहीं कर्म काल सब जीव जंत की करत पाल। उर्धंग बिरहत सिद्धंग स्वरूप बुद्धंग पाल युद्धंग अनूप जय रूप रेख नहीं रंग राग अंशिज तेज अनभिज दाग। जल दल मही बंधन दुरंत जय नेत नेत निशिदिन उचरंत।

आनंद जय नेत नेत निस दिन उचरंत त्व प्रसाद सवैये दीनन की प्रतपाल करे नित संतु बारग नीमन गारे बच बसु रघनाग नरा देव सर्व समय सब को प्रतपार पोखत है जल मैथल मै पल मै कल के नहीं करम बिचारे दीन दयाल दया नित दोखन देखत है पर देत नहारे दाहत है दुख दोखन कव दल दुजन के बल मै दल डारे खंड अखंड प्रचंड पारण पूर्ण प्रेम की प्रीत संभारे पार न पाए सके पदमापद भेद कते भेद उचारे रोज ही राज बिलोकत राज करोग रोहान की रोज नटारे कीट पतंग कुरंग भुजंगम भूत भवेख भवान बनाए देव अदेव खपे अहं वेव न भेव लख्यो ब्रह्म से बरमाए वेद पुराण कतेब कुरान हसे पथके कर हाथ नाए पूर्ण प्रेम प्रभाव बिना पत स्यों किंस

दीन दयाल दया कर श्रीपद सुंदर श्रीपद महापत ए है। काम न क्रोध न लोभ न मोह न रोग न शोक न भोग न भय है। देह बीन स्नेह सभोदन नेह विरक्त अगे अच्छा है। जान को देत अजान को देत जमीन को देत जमान को दे है। काहे को डोलत है तुमरे सुध सुंदर श्रीपद महापत ले है। रोकंते अरसोकंते जल जोगंते वो भांत बचावे। शत्रु अनेक चलावत गावत उतन एक न लागन पावे। राखत है अपनो कर दे कर बाप संभोहन भेटन पावे। और की बात कहा कहे तो सौ सो पेट ही केवट बीच बचावे। जाच भुजंग सो दानव देवा भेव तुम्हें सब ही कर द्यावे। भूमा आकाश पताल रसातल जाच भुजंग सब है सरण्यावे। पाए सके नहीं बार प्रवाहू को नेत ही नेत भेद बतावे। खोज थके सब ही खुजिया सुर हार परे हर हाथ न आवे। नारद से चतुरानंद से रुम नारिग से सब हो मिल गायो। वेद कतेव न वेद लख्यो सब हार परे हर हाथ न आयो। पाए सके नहीं पार उमापद सिद्ध सनाद सनंतन ध्यायो। ध्यान धरो तह गो मन मै जय को अमितोज सब जग छायो। वेद पुराण कतेव कुरान वेद नृपान सब बचहारे। भेद न पाए सके अन भेद को खेदत है अनछेद पुकारे। राग न रूप न रेख न रंग न साक न सोग न संग तिहारे। आद अनाद गाद बेगद वैग जप्यो तिन ही कुल तारे। तीरथ कोट किए स्नान दिए बहुदान महाव्रत धारे। देश फिरो कर बेस्त बोधन के सरे न मिले हर प्यारे। आसन कोट करे अष्ट

अत्र के चलैया चित छत्र के धरैया छत्र धार्यो के छलैया महासत्रण के साल है दान के देवैया महामान के बढ़ैया अवसान के देवैया है कटैया जम जाल है जोध के जतैया विरोध के मिटैया महाबुद्ध के देवैया महामान हूँ के मान है ज्ञान हूँ के ज्ञात महाबुद्धता के दाता देव काल हूँ के काल महाकाल हूँ के काल है पूर्वी न पार पाव हिंगुला हिमाल जावे गोर कर तेज गुण गावे तेरे नाम है जोग जोग साध पौन साधना के तेग बांधे अरब के अरबी आराध तेरे नाम है फरा के फिरंगी माने कंधारी गोरे से जाने पश्चिम के पश्चिमी पछाने निज काम है मरहटा मंगेल तेरे मान सो तपस्या करे दृढ़ वैद लंगी पहचाने धर्म धाम है बंग के बंगाली फिर हंग के फिरंगा वाली दिल्ली के दिल वाली तेरी आगे में चलत है रोह के रोहले मांग देश के मंगेले बीर बंग से बदेल बाप पुंज को मलत है गोखा गुन गावे जिन मजीन के शेष ने आवे ते बते थे आए दुख देह के दलत है जिन्हें तो हिदायो जिन्हें पूर्ण प्रताप पायो सर्व धन दाम फल।

अविनाशी परम पूर्ण प्रकाशी महारूप हूँ के राशि है अनासी कह के मानिए जंत्र हूँ जात जा की बा बहु न मायता की पूर्ण प्रभा के सुचटा के अन मानिए तेज हूँ को तंत्र है के राजसी को जंत्र है के मोहनी को मंत्र है निजंत्र कह के जानिए तेज हूँ गुतार है के राजसी को सार है के शुद्धता को घर है के सिद्धता के सार है कामना की खान है के साधना की शान है विरक्तता की बान है के बुद्ध को उदार है सुंदर स्वरूप है के भूपन को भूप है के रूप हूँ को रूप है गुमत को प्रहार है दीनन को दाता है गनी मन को गारक है साधन को रक्षक है गुणन को पहार है सिद्ध को स्वरूप है के बुद्ध को विभूत है के क्रुद्ध को अभूत है के अच्छे अविनाशी है काम को गुनिंदा है के खूबी को देहंदा है गनी मन गनिंदा है के तेज को प्रकाशी है काल हूँ के काल है के शत्रुन के साल है के मित्रन को भोगत है के वृद्धता की बासी है जो हूँ को जंत्र है के तेज हूँ को तंत्र है के मोहनी को मंत्र है के पूर्ण प्रकाशी है रूप को निवास है के बुद्ध को प्रकाश है के सिद्धता को बात है के बुद्ध हूँ को घर है देवन को देव है निरंजन अभेव है देवन को देव है के शुद्धता को सार है जान को बचैया है मान को दिवैया है जमजाल को कटैया है के कामना को कर है तेज को प्रचंड है अखंडन को खंड है महीपन को मंड है के श्री है नर है विश्व को वर्ण है के आपदा को हरण है के सुख को करण है के तेज को प्रकाश है पाई है न पार पर अवार हूँ को पार जागो की जत विचार तो विचार को निवास है हिंगुला हिमालय गावे हाँ बसी हल विधव पूर्वी न पार पावे या सत्या नाश है देवन को देव महादेव हूँ के देव है निरंजन अभेव नाद अद्वै अविनाशी है अंजन विहीन है।

फटक सी कैलाश कमाऊगढ़ कांसे पुर से ससि सुरंगाबाद नी के सोहियत है। हिमा से हिमालय हर हार सी हलबाने रहंस कैसे हाजीपुर देखे मोहियत है। चंदन सी जंबावती चंद्रमा सी चांद्रगीर चांदनी सी चांदगढ़ जोन जोहियत है। गंगा सम गंगधर बकान सी बुलंदाबाद कीरत तिहारी की उजियारी सोहियत है। फरासी फिरंगी फरासी जगह दुरंगी मकरान के मृदंगी तेरे गीत गाइयत है। फकरी कंधारी गोरे गखरी कर दे जचारी पौन के आरी तेरो नाम जाइयत है। पूरब पलाऊ काम रूप कमाऊ सर्वठौर में विराजे जहां जहां जाइयत है। पूर्ण प्रतापी चंद्र मंत्र।

0: जी बाबा जी बैठे, आओ जी दर्शन कर लियो, दर्शन कर लियो। लोकी प्यारे जेड़ा वो राह तो भी लंघदा ना, मुंह वट के चल जा रहा। कहिंदा बेईमान जेड़ा ना टक्कर जावे, हुण इहनूं पता चल गया मेरी मनता भी चल गई। इस बेईमान ने फिर की करना कीता प्यारियो, जदों अहंकार चल गया, पहले तां माता जी दी शरण विच नहीं आया, फिर प्यारियो अपने बंदे जेड़े मोदबर बंदे विचोलिए जेड़े उन्हां नूं माता जी दे कोल भेजना कीता। ते जा करके ना ओ बंदे रोज जा करके बेनतियां करदे, माता जी गलती होई है जी। ओ कहिंदा बहुत ओ तरले लै रिया, ओ टकरा मार रिया, पागल हो रिया। कहिंदा जी एक वारी माफ कर दियो, एक वारी माफ कर दियो करके ओ बार बार कहिंदा के माता जी मैं भुल गया, बहुत वड्डी मेरे तो गलती होई है, मैनूं बख्श लेना करो। जे तुसी बख्श लिया ना ते फिर सियाने देखो जेड़ा बख्शन वार जेड़ा हुंदा ना प्यारियो, ओदा नाम वड्डा हो जांदा है। लोकी उन्हां नूं याद कर दे के देखो जी कि उन्हें गलती की ना, लेकिन फलाने ने जी अवगुण को ना चितारदा गल सेती लायक के ए सतगुरु महाराज जी दा वड्डियां दा ए बिरद है कि जो शरण आवै तिस कंठ लावै, ए बिरद स्वामी संदा। यह तो आप जी का बिरध बाना है, ते नाल आप जी दे अंदर मादा हिरदा है। माता जी कृपा करो ते अपना जान करके इनू एक बारी माफ कर दियो, बख्श दियो
1: माता को जगत बखाना।
0: ते ए क्योंकि हुण ओदी भी ओ लोक की बोलदे, माता जी ओदे विच तुहाडी भी निरादरी है। लोक अज भी तुहाडा नाम तां जिहड़ा तुसी कह दिता जी मत्थे नहीं लाउणा, लेकिन लोक अज भी

0: माता जी का नवा स्थान जेड़ा बनिया होया उथे आ करके बार बार
1: बंद है थिर
0: रहे उथे आ करके इन्हें थोड़ा जा ड्रामा भी करना कीता क्योंकि बेईमान बंदे ना याद रखो प्यारियो ये बहुत ड्रामा करने वाले होंगे हैं अपा बस ए फस जाते हाँ अपा नू लगता कि चलो जी आ बंदा जेड़ा इंज कर रहा उंज कर रहा लेकिन प्यारियो जिस तरह महाराज ने कहा ना अपराधी दूना निवाय जो हंता मिर्गाए सीस निवाया क्या थिया जा हृदय कसुधे जाए बहुत कट होंदे प्यारियो जेड़े दिल करके प्यारियो सतगुरु महाराज जी दे अगे सिर सिजदा करते हैं कई एहजे लोग प्यारियो वह सिर्फ लोग दिखावा करन दे लई और लोग पचारा करने के लिए अपनी वडियाई कराने के लिए प्यारियो एक काम करते हैं कई बारी लोगों नूं लगता कि भाई ये तो बड़ा बंदा भाई निम्रतावान है लेकिन उनकी सब निम्रता ना प्यारियो सिर्फ एक दिखावा हुंदा एक छल हुंदा कई बारी ना कई जड़े व्यापारी भी जड़े हुंदे प्यारियो असी खुद वेख्या देखो कि खास करके कि गुरु घर दे वस्तुआं दे नाल जिन्हां दा संबंध हुंदा कई बंदे मैं सारिया के लिए नहीं कह रहा प्यारियो लेकिन फिर भी देखो आप जी देखो कि वह बंदे की करे कि कोई बंदा गया जी वह बहुत ये करे कोई गल नहीं जी ये तो गुरु घर के सेवा हो रही है असी तो एक पैसा नहीं खादा जी चलो अज नहीं है तुसी कोई गल नहीं है रहन दियो बाद भी दे दियो हुण लैके चल जाओ बहुत निम्रता दिखाउणगे इंज करनगे कि भाई इन्हें पता नहीं लेकिन प्यारे उन्हों तो कोई काम ना लो उन्हों तो कोई चीज ना लियो फिर देखो उन्हों की निम्रता किस तरह ईरखा दे विच बदल जाती है कहने का मतलब कुछ ये जेड़ा ना लोगों नूं प्रभावित करन दे लई इन्हां चीजां दा बेईमान व्यक्ति जेड़ा सहारा लैंदे ते आम व्यक्ति प्यारियो उत्थे पिघल जांदा उहनूं लगदा कि देखो जी कि इह किन्ना झुक रिहा किन्ना इह कर रिहा लेकिन याद रखो हर कोई झुकण वाला प्यारियो बंदा नहीं हुंदा अपराधी बंदा और ज्यादा झुकदा है सतगुरु महाराज जी दा इह वचन याद रखना चाहीदा आसा दी वार दी बाणी जदों प्यारियो एक वारी पढ़ के उहदे अर्थां दी एक तो आम आपां प्यारियो शाब्दिक अर्थ करदे आं लेकिन जिहड़े अर्थ जिहड़े वड्डे वड्डे विद्वानां ने विचार करके खोल के करना कीता इन्नी प्यारियो तर्कशील ए बाणी है सतगुरु महाराज जी दी सतगुरु महाराज जी ने तर्कां दा इन्ना इहदे विच सहारा लिया महाराज ने ओही पंडित नूं कहा कि एक ब्राह्मण जिहड़ा ना प्यारियो क्षत्री जिहड़ा एक बामण जिहड़ा

हां महाराज ये काम ते सौखा ही है। मैं पीर बुद्धू साह जी नूं चिट्ठी फड़ा देंगा पर मेरे घर की गरीबी दूर हो जाएगी। महाराज कहिंदे हां भाई तू पीर बुद्धू साह जी नूं चिट्ठी फड़ा जी असीं तेरे घर की गरीबी दूर कर दें। हां महाराज ये काम ते सौखा ये काम मैं जरूर कर देंगा। महाराज ने पत्रका लिख के फड़ाई भाई छज्जे नूं फड़ाई भाई छज्जा सतगुरु जी नूं नमस्कार करके ना वापस अपने घर नूं तुर पिया। हुण रास्ते विच सढौरा नगर आ गया पीर बुद्धू साह जी दा उत्थे पहुंच गया जाके पीर बुद्धू साह जी नूं मिलिया। पीर जी मैं आनंदपुर साहिब तों आया आ कलगीधर पातशाह जी ने तुहाडे लई चिट्ठी भेजी है। पीर जी ने चिट्ठी फड़ी फड़ के वो कागज अपने मथे नूं लाया ताने कागज है जेड़ा धन कलगीधर पातशाह जी दे मुबारक हस्त कमलां विचों आया। आखो सतनाम धन है कागज। पीर बुद्धू साह जी ने जदों वो चिट्ठी खोल के पढ़ी ते भाई छज्जे नूं कहिंदे छज्जिया तेनू पता है चिट्ठी विच की लिखिया होया। कहिंदा जी मैनू नहीं पता की लिखिया मैनू ते जिवें महाराज ने फड़ाई उवें लिया के तुहानू फड़ाती। कहिंदे छज्जिया चिट्ठी विच लिखिया आ जिहड़े सिख दे हथ असीं चिट्ठी भेज रहे हां ना पीर जी छे महीने नूं अपने घर रखणा जे ते प्यार नाल मन जे तां ठीक है जे नहीं रहूगा ते जबरदस्ती इहनू अपने घर रखे छे महीने नूं जान नहीं देना पहरे तकड़े ला दिओ पर सेवा खूब करिओ किसे गल की कमी ना रखियो सेवा विच सत्कार विच ये साडा प्यारा सिख। जदों पीर जी ने चिट्ठी विच पढ़िया सतगुरु जी का हुक्म सुनाया भाई छज्जा कहिंदा छे महीने जे रहना हुंदा ते महाराज कोल ही रह पैंदा मैं ते जवाब दे के आया मैं नहीं रहना। पीर जी कहिंदे भाई जे नहीं रहना फिर जबरदस्ती रखांगे गुरु साहब जी दा हुक्म ते हुण सानू मनना ही पैना ना जबरदस्ती भाई छज्जे नूं अपने घर पीर जीआं ने रखिया पहरे ला दिते भी किते भाजी ना जावे खाना पीना हर तरह दी सुख

जबरदस्ती मेरे घर से कब्जा ही ना कर लिया हो, पता नहीं मेरे परिवार का की बनया हो। 6 महीने पूरे हो गए, पीर बुद्धू साह जी ने आजाद कर दिता, लै भाई छजिया अपने घर चले आ जा। सोचा सोचदा सोचदा नगर पहुंचदा, बाहर बच्चियां दे विच ना इहदा लड़का खेडी जांदा, लड़के ते नजर पई इह ते बच्चा मेरा लगदा, पर इहदे इन्ने सोहने कपड़े किवें पाए हुए आ, इहदे चेहरे ते ते रौनक बड़ी। जदों बच्चे की नजर पई भी मेरा बापू आ गया, बजाए इस गल दे भज के बापू वल नूं जावे, बच्चा चीकां मारदा घर नूं दौड़ पिया। भाई छज्जा बड़ा हैरान, बच्चा ते मेरा पर मैनू वेख के डर क्यों गया, ये चीकां मारदा घर नूं क्यों भज लिया। मगर मगर तुर पिया, जाके वेखदा जिथे कच्ची कुल्ली सी उथे सोहना मकान बनिया होया। कहिंदा जेड़ी गलों डरदा सी ना ओही गल हो गई, ओही गल हो गई।